0: भाई जब उजात तमत तमा
1: उनका जंतुं मगर की उनका चेन पूरा ही एक्सो एक्सो टाने बुचन्ना की जो मैं ओहो लिया लिखे रे
0: दिल दिया फील करें
1: एफएम 90.4 तुरा